थु रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषी समाचार जिउ पेस पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सो पिकु द गुलातो स्वस्ति जी जनकवि दुर्गलाल श्रेष्ठ या त थौ मङ्गलबार चिनिता इलनिसे निता इ तक नेपाल भाषा मङ्का खल या ज्याकुती विजेश्वरी राष्ट्रिय सम्मान नाप अन्तिम श्रद्धाञ्जली देसाईगु जुगुदु वे कहाँ गुई सोद मी ग थगु छे कम्फर्ट हाउसिङ फिजसी मधुगु ख वे क या कुल छे ए या न्याक तले ख ता इ झ निसे म मफिया चुनादी म श्रेष्ठ पेन्यु झ त चोक म मफे व नर्विक अस्ताले पढ्ना यागु ख मिहिको शनिले रिसाजना छे हगु ख वेक बहनी थगु छे मधुगु वेक या छे चपिन्छ धागु ख जनकवि दुर्गलाल श्रेष्ठ मधुकुली नेपाल सम्बत नुत राष्ट्रिय समारोह समिति हि शोक वक्तव्य पिथङ्गु दो समारोह समिति नाय प्रेमिरा तुला द रहलहाची तया पिथङ्गु उगु शोक वक्तव्य वेक मधुकुली नेपा या साहित्यिक व सांस्कृतिक खेले तधङ्गु क्षति जुगु खन यथङ्गु दो शोक वक्तव्य निनातगु दो नेपाल सम्बत व नेपाल भाषा आन्दोलन या हेलुवा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ थोए नेपाल सम्बत 1146 गुलाथो चौथी श्रावण 31 गते खुनु मधुकुली नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति मर्महात व स्तब्ध जुगुदु वेक मधुकुली नेपा या साहित्यिक व सांस्कृतिक खेले तधङ्गु क्षति जुगुदु शोक वक्तव्य नेपाल सम्बत 1054 दिलातो नवमी कुनु ए या नेकत्वले जन्म काम दुर्गा श्रेष्ठ थगु नचागु वैशनिसि हे त्यानु मचासे साहित्यिक साधना व भाषिक अधिकार आन्दोलन सक्रिय ज्यादिल वेक्ल नेपाल भाषा व नेपाली निगुली भाषा सृजना यनादिको चिनाख मे प्याख अनुवाद साहित्य मचा साहित्य तिथि रचना व सफो नेपा या वाङ्मय अमूल्य सम्पत्ति जुगु व विशेष याना खा जुया जक खोयागु खी थेन्जागु नेवा आन्दोलन या त ऊर्जा बियाचङ्गु मे अथे फुलको आँखामा फुले संसारले चाहिँ युगको युगको काजे मे या पाखे वेक झी दथुई सदा मनाचुनी ख नेथङ्गु दो अथे शोक वक्तव्य साहित्यिक व सांस्कृतिक खेले वेक्ल यनादिको विशिष्ट योगदान या कदर यासे नेपाल भाषा एकेडमी पाखे जनकवि या उपाधि नेपाली साहित्य व सङ्गीत खेले ताई यनादिको योगदान या नीति लोक हाउगु जगदम्बा श्री पुरस्कार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान या मानर्थ दुज नाप रमाइला नानी बाल साहित्य पुरस्कार राष्ट्रिय बाल साहित्य पुरस्कार नूर गङ्गा पुरस्कार नरोत्तम दास इन्दिरा पुरस्कार अभियान पुरस्कार जेएए उत्कृष्ट नाटककार पदक व हरिहर शास्त्री सावित्री देवी साहित्यिक पुरस्कार थिए जागो तिथि गरिमामय पुरस्कार व मान सम्मान विभूषित यनातम व्यक्तित्व जुगो खन यता तगुदो अथे शोक वक्तव्य या अन्त्य मधुम जनकवि दुर्गाल श्रेष्ठ साहित्यिक योद्धा जक मुखुसे भाषिक समानता व पहिचान आन्दोलन या नेतृत्व यनाचुम नेलवा नख नेपाल सम्बत या त राष्ट्रिय सम्बतको त पूर्ण व्यवहार छेले त व नेपाल भाषा या त सरकारी मान्यता विकेत वेक या चोसा नाप भोलि बिहारे खनिदुको निस्वार्थ व इमान्दार कर्मचित न्याब्ले हपा ब्याचुनी व थुगु दुःख याले मधुम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या पुण्य आत्मा सुखावती भुवन बास लामा धका दु नुगुल कामना नाचुना नाफ दुःख कपी छेजपिन्त धैर्य धारणा या फेमा धका बिचा ह्याका चुना मधुम जनकवि दुर्गला श्रेष्ठ त सृजाल पुङ्कु गु झोले वेक्ल याना दिगु भाषीको सांस्कृतिक जागरण या लपुती दिपा मकासे झ्याउनेगु सङ्कल्प याना चुना धका न शोक वक्तव्य नेतना तगुदु प्रति सभा भदौ 10 गते बुधबार प्रधानमन्त्री बालनाथ शाह नप सांसद पनिको निहस लिसज्या जो कोचु कुदु सभामुख डोल प्रसाद अर्याल थो विशेष ख पितबियादिगु ख थो निहने सांसद पनिको निहस या लिस बित प्रधानमन्त्री शाह या त सभामुख ख रोलिङ यानादिगु ख प्रधानमन्त्री बालनाथ शाह नप गण्डकी प्रदेश या मुख्यमन्त्री सुन्दरराज पाण्डे नाप्नादिगु दु सिंहदरबारे जुगु नाप्या ज्यासो वेकपि दुती अन्त सरकार सहकारी व समन्वय विशेष सल जुगु धाकु दु किपु या बाघ भैरव देगले दे दशम भदौ 1 गते न्याकीगु बाघ भैरव जात्रा मिग न्याकुगु दु बाघ भैरव मूर्ति पलिस्ता यागु दि या लसत्या उगु जात्रा न्याका चुङ्गु ख गोपाल राज वंशावली कथ किपु या पलिस्ता
जुजु शिवदेव तृतीय नेपाल सम्बद 219-246 च्यादोथु यागु नितना तगुदो किपु पलिस्ता जुगु इले पाखे हे पाक भर्या बदेग नाप पलिस्ता जुगु त्याका उया चङ्गुदु सगु किम्बदन्ती कथम बाघ भर्याब दुगु थासे नापा जङ्गल जुगुली अन फै जोवा पिस फै दुगु जो वनिगु इले चा देखा तगु मे मधुम धु या मूर्ति देखुगु ख वे मूर्ति भैरद य रूप कया धु भ्याचा दुगु मे नेगु या नहल ओहे तम फैजो वा पिन्स उम चाया मूर्ति मे मत गुली अन्य बाघवर्या मूर्ति मे मधुगो धाइगु धापुदु नापा होम अनुष्ठान लिसे पूजायना जात्रा न्याकेगु याना चोङगुली विक्रम सम 2013 भदुक निषेचक बाघभर्या ख जात्रा याना अगु संस्कृतविद तथा नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय विभागीय प्रमुख डाक्टर बज्रमुनि ब्रजाचार्य जानकार ब्यादिको ख बाघ भैरव देगले सुङ्गु मूर्ति दु उकी मध्ये थ्यामथ चिन्गु इन्च्या चिधङ्गु मूर्ति या त लक्ष्मी बुइगले यङ्का पलिस्ता यागु याई वे बाघ भैरव मूर्ति या त थिथि बाजलिसे पेमेसिन खते तया कोबिना किपुया फुलाङ्गु नगर चाहिकेगु परम्परा दु उगु ख जात्रा बाघ भैरव देगल झ्याना चितु त्वा तननी सिमधबु दे पुखु गछे ल्याकु जुका हाक्न बाघभैरव देखले यङ्का कोचाइगु किपु नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष इच्छा कुमार मर्जन जानकारी प्यादिको ख सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा या बैठक ठाउँ चुनितेङ्गुदु सुते चिन छता इले सिंह दरबार चुनिगु बैठकके थिथि पेङ्गु मन्त्रालय नप स्वागु विशेष मन्त्री पिसँग लिस बिगु ज्या धल दु मुज्या ज्या धल कथम परराष्ट्र मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ओ कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री पिसँग लिस बिगु ज्या धल दु अथवा प्रधानमन्त्री बालनेत सापाखी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम थारू आयोग या वार्षिक प्रतिवेदन यवैगु ज्या धल दु बागमती प्रदेश या प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा मुख्यमन्त्री नियुक्ति नीति भदौ 4 गते बिहिबार पेता इतक दाबी न्यवे त इनाप यानादिगुदु प्रदेश या मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाम हिग थगु पद राजीनामा ब्यादिगु ख साउन 6 गते नेकपा एमाले प्रदेश सरकार त बिगु समर्थन लिता कागुली बानिया अल्पमते लागु ख लुम्बिनी प्रदेश या मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य प्रदेशसभा विश्वास या मत कया दिगुदु वे कया पक्ष पी न्याको मत वा विपक्ष निकुकु मत ओ गुख वे कया त नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राष्ट्रिय जनमोर्चा वा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मत ब्युगुख नेपाली काङ्ग्रेसमा वे कया त ब्यातको समर्थन लित कागुली मुख्यमन्त्री आचार्य हाक्न विश्वास या मत कया दिगुख र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष धीरज सेठ या त नेपाली सेना या मानार्थ महारथी या दर्जनी चिं ललना दिगुदु राष्ट्रपति भवन शीतल निवासे सगु तजिक ज्याजु या वेक्ल थथे हनादिगु ख नेपा व भारत या सन् 1950 या सन्धि कथ भारतीय सेनाध्यक्ष या त थो चिं ललागु ख नेपा या सेनापति या त न भारतीय मानर्थ महारथी या दर्जने चिन ह्यवेगु परम्परा दु सुनियङ्क या नेपाल भ्रमण नीति वेक मिक नेपा थेङ्कादिगु ख सर्वोच्च अदालत जनस्था या प्रधान सम्पादक व विश्व पत्रकार महासङ्घ या नोकु किशोर श्रेष्ठ या त हिरासक मुक्त या त व ज्याको पाखे यङ्कुगु विद्युतीय उपकरण लित बित उज बिगुदु पत्रकार श्रेष्ठ या जहान सरस्वती श्रेष्ठ सर्वोच्च दायर यनादिको बन्दी प्रतिष्ठीकरण या रिटे सुनवाई यासे न्यायाधीश द्वे डाक्टर नहकुल सुवेदी व बालकृष्ण ढकाल या मङ्का इजलास मिग श्रेष्ठ या त तोटे त परामर्देश जारी यनादिको ख सर्वोच्च या आदेश लिपा पत्रकार श्रेष्ठ हिरासत मुक्त जु आदिगु दु हिरासत मुक्त जुधङ्गा पत्रकार श्रेष्ठ थत अदालत न्याय ब्युगु लिस ब्यादिल
किपु या पाङ्गा चुनादी म मे चोमी कुलबहादुर मर्चन या चोसा पिजो गु थिकु थिकु बोल्या मे म्युजिक भिडियो श्रावण 31 गते आइतबार पितुपूजा जुगुदु ज्यापु मागुठी किपु या गोसाले ख्याली जुजु मधुकृष्ण श्रेष्ठ या मुपासी नुगु मे थिकु थिकु या म्युजिक भिडियो प्रिमियर जुगुखा मे चोमी कुलबहादुर मर्चन या थिकु थिकु निकोगु देचा कसा थोसिवेन ह थनी दक्षिण ह नाजाम मेहालामी रत्नसुहा मर्चन या सले व नाजाम मेहालामी सतीश मर्जना लसे कुचु कुचु मे म्युजिक भिडियो दने धङ्कु गुदो धुगु ठिकु ठिकु म्युजिक भिडियो कुलबहादुर मर्जन युट्युब च्यानल पाखे पिदने धङ्कु गुदो ठिकुठिकु मे सतीश मर्जना लसे सतीश व रत्नशोभा मर्जन या सल थोया चुङ्गु न्याइपुगु जो मे ख ठुगु मे या म्युजिक भिडियो कलाकार पी मनोज मर्जन व निरिसा मर्जन अभिनय एनादिगुदो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान नाप अमेरिका यनाचुङ्गो सलस पङ्ग थनथासा ओमाने आक्रोन यागु ख्याचो ब्यादिगुदो फक्स न्युज नाप अन्तर्वार्ता ट्रम्प अमेरिकी कुतयात लिचो लाकेगु कत अज्यागु चुन ज्याजो जुलोधासा आक्रोन यागु ख्याचो ब्यादिगु ख अमेरिका व ओमा निगुली पक्ष इरान नाप बिस्क सहल ब्याका चुङ्गुदो विश्व अर्थतन्त्र धुग कथ कया तगु हर्मुज नपु च्याके त दुग्यङ्क सहल अज्या चुङ्गुदो थौ देङ्क सामान्य लिसे मदिक वा वैगु तुकमा यागुदु कोसी व मधेसिया मो थासे धाकुफे वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागु ख मिग सोनिगले निच्यागु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु ख थौ न थोय ल्याख तान वैगु तुकमा यागुदु नेपाल भाषे बुख कोचाल शुभ्या।

अब प्रस्तुत छ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी।

लासो फ्याफुल्ला तिनी मन्जु श्री सम्मत 2862 तालो यान्दे लाला छेपाढु विक्रम सम्मत 2083 साल भदौ लाला छेपाङी मिरे मङ्गलबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्दा डेनमुला ना सूर्य मोक्तान रिमटिम पर्यटन दिन नागरिक उड्डयनबुन खड्गराज पौड्याल से युरोपियन युनियनलाई हवाई उडान सुरक्षा सूची अर्थात् मलाङ सूची ग्याम नेपाल द फिर्काप तेबारी सरकार से प्राथमिकता रिधान्से गेला बन्खा बम्बला विषय संक्षेप मला प्रतिनिधि सभारी तिनी सांसद गति सिंह प्रश्नलाई जवाब दोन्छिवान ब्लोन पौड्याल से नेपाललाई उडान सुरक्षालाई फेरि लाभा प्रतिबद्धता सुधारलाई बा गे योजना द कार्यान्वयन नियमित क्षमता लिएन लाभा संस्थागत सुधार थिएन युरोपेली सङ्घ थिएन लाभा काठोइला आधार रे नेपाल द हवाई उडान सुरक्षालाई मलाङ सूची ग्याम ते बारे बङ्गला पनि मलाई विशेष संक्षेप हिन्न चरणलासी ऊर्जा किनोर थिएन सिन्चाई ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से नोर्दिङ 2082-83 रे नेपाल से भारत थिएन बङ्गलादेश रे बिजुली चुङसे अर्ब घी चुइसे कु करोड सोमचुइसे घी लाख ब्लिचुइसे घी स्टाङ्गा आमदानीलाई दिन मला विशेष संक्षेप मला प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चाहिँ साङ्री सांसद गति सिङ्गे प्रश्नलाई जवाब दुन्छिमान ब्लोन श्रेष्ठ से नेपाललाई जलविद्युत उत्पादन लाभ थिम गान्धेरी ब्योङमा क्युरी भर परब तपसे बारखारी लामा बिजुली उत्पादन तपा थिन हुल नाङरिन खपत लबारी खम्बा पूर्वाधार लामा आरे बसे बिजुली खेर निबारे आपिन मारे भारत थिन बङ्गलादेश रे चुङदोबा अवस्था खाब मला विषय संक्षेप हिन्ना श्रेणुलासे सानाम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से सानाम बुन्ला ग्लुबा ङेला टाङ्गाला टाङ्गा दारिम योनान पिन्छेला मला विषय संक्षेप मला प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चाहिँ साङ्री सांसद गति सिङ्गे प्रश्नलाई जवाब दुन्छुमान ब्लोन चौधरी से नेपा दुईरी सानाम बोन्ला ला भ्रेभ्रे रि पिनमान खबर टाङ्गा दारिम ला सोमसोम रि पिन्छेला मला विषय संक्षेप हिन्न तिनीलाई चाहिँ साङ्री स्यान बोन गति दा सांसद गति सिङ्गे प्रश्न गतिलाई जवाफ नुन पिन्छे टेपु बोला चुपिमा गाछा प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चाहिँ साङ्री सांसद गति से हिल्कुङ निन ग्रेन नाम ताई बलि चखाबा भाल थिएन दुई से मिलुई थिएन लामन से गदेरी क्षति ताना लाभ ताम्रे सरकारलाई ध्यान छङ्ग नलाबन विपद व्यवस्थापनलाई पूर्व तयारी दा प्रभावकारी चौबारी मोहिजेन लापमला सांसद गदेश भाल थेन दुई पीडित दिम थिमेदा सुरक्षा पिनबारी मोहिजेन लाबन भाल थेन दुईला जोखिम रिमोबा हिउलबाला सुरक्षा लाबारी उद्धार लाबारी थेन घाइतेदा मानलासे पिनबारी सरकारलाई ध्यान छङ्ग नलाब हिन्न सांसद गदेश हिउलको ग्रिन ग्यासला अभाव त सिटी बासे सजिलो छन् ग्यास याङबारी खाम्बा ठेम्सोसे ग्यासला समस्या त छाङ्नलासे पिनबारी सरकारलाई ध्यान छङ्ग नलाब मला सांसद गदेश लिच्छला दिङ्गदेरी सडक दुर्घटना नि प्रप्त सिसिब गदेला संख्या लेबन खापसे सडक दुर्घटना द च्याङ लाबारी खाम्बा टिम सुबारी नन मोइजन लाब मला सरकार चाहिँ निजी थुम्सी लाभा लगानीलाई सुरक्षा संरक्षण थिएन प्रवर्धन लाभान लगानी लाभा गदेला मनोबल लिन लाभारी विषय निजी लगानी संरक्षण थिएन प्रवर्धन थिम जारी लाभ मला हिउला नोर विकास लाभारी थिएन हिउलबा त गेपिन माने खाबा निजी थुम्ला मनोबल लिन लाभाला छ्याम्री लगानी लाभा वातावरण सुबारी थिम बाबा हिन्न विषय सरकार से पाङ मला लगानी लाभा मि औद्योगिक थिएन छौ संरचनाला भौतिक सुरक्षा सम्पत्ति संरक्षण नोर्थुम द ज्याब सुबारी थिम शोभा लगानी लिन लाभा थिएन उद्यमशीलता विकास लाभा ताम्दा चुठिम से प्राथमिकता पिन मान खाब मला नेपाल सरकार ब्लोनसेङजाङ से 2082 साल चैत्र लाला चुई से सोमकुनु स्वीकृत लाभा शासकीय सुधार सम्बन्धी ग्यार्जगिक गे सुचिरी निजी थुम्ला सुरक्षा लाभा थेन लेना लाभारी खाम्बा थिम शोभा गे योजना शोभ मुभा थेन अनुसार योजना थिम स्वीकृत लासे कार्यान्वयन लाभ हिन्न नेपाल आयल निगम से बजार रि सोलझुबा ग्यास सजिलो छन् किनबारी खाम्बा तासिजिमा चाहिँ राङ्दा तोबबीमा लामा ग्यासलाई सिलिन्डर दिम्रे आथानबारी मैजन लाभ मला दान्दे उपत्यकारी तोबबीमा लामा सिलिन्डर ग्यास बोलासी झिनमा चाहिँ दारेम योनान सजिलो छन् ग्यास याङबारी खाम्सेला मला बिसिन निगम से पाङ मला निगमलाई अनुसार तिनी चेकन याम्बो उपत्यकालाई गोर्ङी चुसे घि ग्यास उद्योग से तोङ ब्लिचु सङ्गीस ग्यास सोम्से गोर ब्रेचुइ ब्रे सिलिन्डर ग्यास जुस मला चुरानुलासी तिलमा याम्बो उपत्यकारी तो घाचु सङ्घी ग्यार्जा घाँसे गोर निश्चुई ढु सिलिन्डर ग्यास झु भुबा निगम चाहिँ निभा साउन लाला निचु सङ्घिस्कुनु हेन्से तिनी ग्यासे दोनामा लाख सोम तोङकु ग्यार्जा घाँसे गोर घाँचु सोम सिलिन्डर ग्यास चुङसी जिन्मा मला विषय पाङ्बा मला
राष्ट्रिय सभालाई संघीयता सबलीकरण थिएन राष्ट्रिय सरोकार समिति लक्षी साङ्री सांसद गदेसे ठिम सोभा ग्लारी समावेशिता लठिम अनुसार गोपाङलाबारे आम्याङमा गदेता अवसर पिनबारे खामदोरा विशेष सुङ्गमला समिति लतिन टिपची साङ्री सांसद गदेसे ठिम सोभा ग्लारी दान्देदोना गोपाङलाबारे आखाम्बा हिलबादा आरक्षण घ्याम अवसर पिनमा हिन्ना विसाम ठिम सोभा ग्लारी बिरानी हिलबाला च्योचोनन ताम थेन सहभागिता सुनिश्चित लाबारे खामसेलमुला विशेष सुङ्गमा हिन्ना चिसाङ्री खेनबकदे डाक्टर पासाङ शेर्पा डाक्टर प्रतिमा गुरुङ थेन शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन्से समावेशिता गोबाङ लाबा ताम्रे चेकेन सीमिता थान्ना युल्ला ठिम निर्णय थेन सार्वजनिक निकायरी अवसर थेन सहभागिता च्योचोनन कार्यान्वयन लाबारिनन मैजन लाबामुला काइब्लोन बालेन्द्र शाहदा भारतलाई स्थल सेना चोहो जनरल धीरज सेठ से रूप तसे लेङमला शुभमला काइब्लोन थेन रुङब्लोन शाहदा काइब्लोन थेन ब्लोन सेङजाङलाई गेदिमरी रूप तसे लेङमो लासुभमुला विषय काइब्लोनलाई कागुर थेन अनुसन्धान खेनपो दिपा दाहालसे सुङ्गा हिन्ना रूपतापदुरी नेपाल दा भारतलाई ग्लेबोन नवीन श्रीवास्तव सेनन बोकिन शुभमुबा चोपी माछा काइब्लोन बालेन्द्र शाहदा गण्डकी प्रदेशलाई ग्रिनबोन सुरेन्द्र राज पाण्डे से रूप तसे लेङमला शुभमुबा काइब्लोन थेन बोनसेङजाङलाई गेदिम्री रूपतामा प्रदेश थेन सङ्घ सरकार डिक्सी गेलाबा ताम्री काठुइला बोमुबा विषय काइब्लोनलाई काग्युर थेन अनुसन्धान खेनपो दिपा दाहालसे सुङ्बा हिन्ना रूपतामा सङ्घीयता कार्यान्वयन लाबा दुई रिमराङमा समस्या दा खाराङला सिछाङलाबारी खामला बिबा ताम्री नन काठुइला बोमुबा बिपी राजमार्गला काब्रे जोङला धुलिखेल हेन्से नबुबुतला दाप्चा चामदोना ग्याम ग्रेन सोसेला तापुमला योजना अनुसार थे सडक ग्यामदा छुई मिटर पिच लसेलमला विषय डिभिजन सडक गेदिम भक्तपुर सेपाङबा हिन्ना नन्दे पिच लप सडक ग्याम घिचुई किलोमिटर रेङमा मुला विषय नुन गेदिम सेपाङबा मुला सडक ग्रेन सोबारी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर सोसेजिनमा मुला विषय गेदिमला ग्रेन डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशे सुङबा हिन्ना गार्जगिक से ढुचुई किलोमिटर रेङमा बिपी राजमार्ग सोसेजिनमा लिचा विक्रमसम्म 2072 साल असारला लचिसे ब्रेक हुनु जापान सरकार चाहिँ नेपाल सरकार दा औपचारिक रूपले पेन बम्बा महालेखा नियन्त्रक गेदिम्से राष्ट्र सेवक कर्मचारीका देला तलब भत्ता चुङ्गा चुङ्गा रेरी पिनबारी सम्बन्धित निकायता पत्र पुइ बम्बला निर्वाचन आयोग से सिसिजिनमा मतदातालाई विवरण अपडेट लासिपिनमारी सम्बन्धित दिम्थेमेथेन सरोकार थानमा गदेता मोहिजन लापम्बला आयोगलाई रोलुन्छेन नारायण प्रसाद भट्टराई से गुर्गीका कागुरी छिसे दुई दुईरी मतदातालाई मिन शुद्ध मुबा आरेबाला अपडेट लाबा आलाबा बिनान्छन् विश्वास लाबारी खम्बा थेन देनमा सोबारी नियमित रूपले मतदाता नामावली अपडेट लासिपिनमारी मोहिजन लाभ हिन्ना मतदाता सिसिजिनमा लेचा दिमला खाजी बैनुन मुल्मी अथवा मिसे सिसिजिनमा प्रमाणपत्र ल छ्याम्रे सम्बन्धित निर्वाचन गेदिम्री योनबेमा योजना सूचना पिन्से मतदाता नामावली अपडेट लासिपिनबारी मोहिजन लाभ हिन्ना सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल ग्याम रेदाङसेन प्रसारण लबन खबा सानाम अर्थात् कृषि गे खोर्सेङबा सम्बन्धीलाई समझदारी पत्र रे तिनी यायिक लाबुमला तिनी रेडियो नेपाल डे गे खोर सम्बन्धीलाई समझदारी पत्र रे सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाललाई गेतेनमा ग्रेन प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौथेन ग्रेखोर प्रायोजक नेपाल कृषि सूचना थेन प्रशिक्षण केन्द्रलाई ग्रेन पोथेन रोल लोन्छेन सबनम शिवाकोटी से यायिक लाबहिन्ना ओसेम मकवानपुर जोङला फेदी गाउँपालिका ढू जुरीखेत विभागलारी स्कर्पियो गाडी दुर्घटनातामा मेन्दो गिक मिसिब मुला विसाम स्यान मेन्दो घाँ घाइते तब मुला तिनी सियोला निस ग्यामा दुर्घटना तब घाइते तब कदेरी मेन्दो ब्लिद मान्लाबारी याम्बुला छाउनी अस्पतालले बाबु मुबा तिनी कदेरी ब्लिचु से कुदिङला लक्ष्मी बडु मान्लाबा ताङ्री शिव हिन्न विषय प्रहरी से पाङपामुला चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान बन्लासेको लसो फ्याफुल्ला

लांचौक के धुलीखेल से नमोबुद्ध के दीपा दापचा पुल तक सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक उस सड़क हिस्से पर 10 मीटर का आम सड़क तौसी की जाएगी। पीचशुदा मरकजी सड़क की मौजूदा चौड़ाई औसतन 5.5 मीटर है, जबकि चौड़ा किए जाने वाली सड़क की लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर तवील शाहराह की तामीर मुकम्मल होने के बाद हुकूमत जापान ने उसे विक्रमी संवत 2072 साल आषाढ़ 18 गते रस्मी तौर पर हुकूमत नेपाल के हवाले कर दिया था। मकवानपुर के भीमफेदी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के जूरी खेत में स्कॉर्पियो के हादसे में पड़कर एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 अफराद उस हादसे में जख्मी हो गए हैं। आज सुबह तकरीबन 7 बजे पेश आने वाले उस हादसे में पड़कर जख्मी होने वालों को मजीद इलाज के लिए काठमांडू के छावनी अस्पताल लाया गया था, जिनमें से 49 साल एक जख्मी लक्ष्मी बडू की इलाज के दौरान मौत हो गई है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

ई रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झा से सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में खाना बनाबे वाला गैस, रासायनिक खाद, मनसूनजन्य विपद आ जंगली जनावर के आतंक के व्यवस्थापन के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण भेल छे। बैठक के शून्य समय में सांसद सब ए विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करने चले थे। सांसद बुध रत्न महर्जन जनता के स्वास्थ्य, बाट, बीया आ रासायनिक खाद के तत्काल सुविधा क देवा लेल सरकार संग मांग कलन। सांसद वासना थापा सामान्य जनता के महगी के कारण खाय पर सेहो समस्या भेल बतौलन। सांसद बालावती शर्मा विदेशी रोजगारी में गेल नेपाली युवा सब विदेश में ठगा के आ जान सेहो जा धरि के अवस्था के अंत करबाक लेल मांग कलन। शून्य समय में सांसद सब बीना गुरुंग, बुद्धि प्रसाद पंत, बसुमाया तमांग, भरत कुमार स्वार, भरत प्रसाद पराजुली,

भरत बहादुर खड्का, भीम कुमार बुढा मगर, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, माधव बहादुर थापा, मनमाया विश्वकर्मा, मनीष खनाल, मोहनलाल आचार्य, यज्ञ बहादुर बुक्टी, रंजु न्योपानी समसामयिक विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण करौलिन। अहिना सांसद सब क्रमशः रचना खतिवाडा, रविन महतो, रजनी श्रेष्ठ, रत्न कुमारी थापा, रमेश कुमार मल, रमेश कुमार सापकोटा, रमेश प्रसाई, रविन्द्र पटेल, राजकिशोर महतो, राजन गौतम, राजीव खत्री, राजेश कुमार चौधरी, राधिका रमतेल, डाक्टर राम लामा, रिंगला यादव, रीना उप्रेती, रुकेश रंजीत, रुक्मिणी देवी कोइराला, रेखा कुमारी यादव, रेणुका काउचा अपसिहो ध्यानाकर्षण करौने छलथि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र सासंग भारत के स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ शिष्टाचार भेंटवार्ता कलने छो। रक्षा मंत्री सेहो रहल प्रधानमंत्री सासंग सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में सेनाध्यक्ष सेठ आज शिष्टाचार भेंटवार्ता कलने छो। प्रधानमंत्री के प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल बात के जानकारी दिलन। अ भेंट में नेपालक लेल भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव सेहो सहभागी छले। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल औपचारिक के निमंत्रणा में सेनाध्यक्ष सेठ चार दिनक भ्रमण के सिलसिला में रवि दिन काठमांडू आयल छले। पांच सदस्य भ्रमण दल में हुनक धर्मपत्नी कोमल सेठ सेहो छथि। सेनाध्यक्ष सेठ के सोम दिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाली सेना के मानार्थ महारथी के दर्जियानी चिन्ह प्रदान कलन। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में हुनका मानार्थ महारथी के दर्जियानी चिन्ह प्रदान कयल गेल। नेपाल भारत बीच सन 1950 से एक दोसर देश के सेना प्रमुख के मानार्थ महारथी के दर्जियानी चिन्ह प्रदान करबाक परंपरा अछि। सोम दिने प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल आ सेठ बीच द्विपक्षीय भेंटवार्ता भेल छल। एहि अवसर पर हुनका सबके बीच आपसी हित के विषय में संगे नेपाल आ भारत बीच के द्विपक्षीय सैन्य संबंध के थप सुदृढ़ बनेबाक विषय में विचार विमर्श भेल छल। संगे सेनाध्यक्ष सेठ नेपाली सेना के सैन्य तथा स्वास्थ्य उपकरण हस्तांतरण कलन। मित्र राष्ट्र के उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारी अ किस्म के भ्रमण से दू देश बीच के सैनिक संबंध के आर विस्तार एवं प्रगाढ़ बनावा थप मदद पहुँचत से नेपाली सेना जनौलक। सेनाध्यक्ष सेठ बुध दिन स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल संग नेपालक लेल यूरोपीय संघ के राजदूत भेरोनिक लोरेंजो आई विदाई भेंट कलने। परराष्ट्र मंत्रालय में भेल भेंट में हुनका सबके बीच नेपाली संबंध आपसी हित तथा इच्छाक विभिन्न विषय में विचार विमर्श भेल छल। एहि अवसर पर राजदूत लोरेंजो परराष्ट्र मंत्रालय संघ के उत्कृष्ट संबंध के लिए धन्यवाद व्यक्त करत मंत्रालय सहयोगी सक्रिय उत्तरदायी रहल कहित परराष्ट्र मंत्री खनाल के नेतृत्व मार्गदर्शन प्रति खुशी व्यक्त कलन। परराष्ट्र मंत्री खनाल राजदूत लोरेंजो के खुलापन ईमानदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद देत नेपाल परराष्ट्र मंत्रालय प्रति ओ देखौने सहयोग की प्रशंसा कलन। भेंट में राजदूत लोरेंजो ईयू नेपाल संघ हिमाल तथा पाइन संबंधी एजेंडा में सहकार्य करबाक लेल इच्छुक रहल बतौलन। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी किसान से खरीद कायल गेल दूध के भुगतानी अवधि घटेबाक प्रतिबद्धता जनौलने। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में सांसद निष्कल राय उठौने प्रश्न के जवाब दैत ओ बीतल में किसान की दूध के भुगतानी अवधि 8 महीना से घटा कर अखन 3 महीना में आनल गेल आवे वाला दिन में के आर कम करबाक जानकारी दिलन। हुनक हिसाबे बीतल 2 आर्थिक वर्ष में दूध विकास संस्थान DDC साबिक से अधिक दूध खरीद कर पड़ल छल। बिक्री नहीं भेला से अधिक दूध के प्रशोधन का आरोई के गर्दा आ नौनी उत्पादन कायल गेल। आय के मौजदात बढ़ला से बिक्री तथा आमदनी में समस्या आयल आदि से किसान के भुगतानी प्रभावित भेल मंत्री चौधरी के कहब छलन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल सप्तरी जिला के धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल के योजनाबद्ध विकास का स्थानीय रोजगारी आर्थिक समृद्धि और जिला के पहचान संग जोड़बाक चाही बतौने छलथि। मंत्री पौडेल जिला के विभिन्न धार्मिक आ पर्यटकीय स्थल के अनुगमन तथा स्थलगत निरीक्षण करबाक क्रम में बात बतौलने। ओ प्रसिद्ध धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल छिन्नमस्ता भगवती मंदिर में दर्शन तथा पूजा पाठ कने छलथि। मंदिर के पीठाधीश महाकांत ठाकुर मंत्री पौडेल सहित सहभागी सबके दर्शन तथा पूजा पाठ करौने छलथि। जिला के धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटक क्षेत्र के समग्र विकासक संभावना पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक पहल के विषय में विचार विमर्श कने छलथि। जिला के प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटक क्षेत्र के आपस में जोड़ी कर पर्यटन सर्किट के रूप में विकास कर सकला पर जिला के पर्यटन प्रवर्धन संगे स्थानीय स्तर में रोजगारी आर्थिक गतिविधि विस्तार कायल जा सकते पर सहभागी सब जोर देने छलथि।
जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ के आई अंत्येष्टि कैल गए 93 वर्षक श्रेष्ठ के रवि दिन रात बूढ़ा नीलकंठ स्थित अपने निवास में निधन भेलन। अंत्येष्टि से पहिने हुनक पार्थिव शरीर के अंतिम श्रद्धांजलि के लिए बिजेश्वरी स्थित नेपाल भाषा मंका खलह के प्रांगण में राखल गेल छल। ओहि पश्चात पार्थिव शरीर के नगर परिक्रमा करा कर अंत्येष्टि के लिए शोभा भगवती स्थित कर्णद्वीप लग गेल छल। गृहमंत्री सुदन गुरुंग, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ, काठमांडू महानगरपालिका के कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोल नेपाल के राष्ट्रीय झंडा उठाकर श्रद्धांजलि अर्पण कलन। नेपाल भाषा परिषद 2 दशक पहिने से जनकवि उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्रेष्ठ बीतल 6 दशक से निरंतर साहित्य सृजन में सक्रिय छले। नेपाल भाषा संगे नेपाली भाषा में सेहो कविता गीत तथा अन्य साहित्यिक विधा में सक्रिय हुनक सय थरी बाजा एउटै ताल फूल के आँखा में फूले संसार जस्ता चर्चित गीत अत्यंत लोकप्रिय हुनकर छलिन। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति के बैठक में सांसद सब नीति निर्माण तह में समावेशिता के सिद्धांत के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व होब नि सकल समुदाय के अवसर दिल जेबाक चाही बतौलन। समिति के आई सिंह दरबार में बैसल बैठक में सांसद सब नीति निर्माण कर वाला तह में अखन धरि पर्याप्त प्रतिनिधि होब नि सकल समुदाय के आरक्षण मार्फत अवसर दिला पर राज्य के नीति निर्माण प्रक्रिया में सब वर्ग के समान आवाज सहभागिता सुनिश्चित कल जात से बतौलन। सरकार द्वारा नियुक्त हो वाला विभिन्न निकाय के पदाधिकारी में समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करवाक विषय में विचार विमर्श करित सांसद सब सरकारी नियुक्ति में समानुकूल समावेशिता सुनिश्चित कर उपलब्ध तथ्यांक के आधार पर नीतिगत सुधार आवश्यक रहल बतौलन। अहिना अपांगता भेल व्यक्ति जातीय तथा सामाजिक रूप में पाछू पड़ल समुदाय दलित महिला तथा राज्य के विभिन्न तह में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होब नि सकल अन्य समुदाय के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करबाक आवश्यक अध्ययन तथा अनुसंधान आगू बढ़ायल जेबाक चाही पर सांसद सब जोर दिलन। बैठक में विज्ञ सब डॉक्टर प्रशांत शर्पा, डॉक्टर प्रतिमा गुरुंग आ शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन समावेशिता केवल प्रतिनिधित्व में सीमित नहीं रख राज्य के नीति निर्माण तथा सार्वजनिक निकाय में अवसर आ सहभागिता की समान पहुँच सुनिश्चित करवा सन कार्यान्वयन करबाक चाही बतौने छले। महालेखा नियंत्रण कार्यालय राष्ट्र सेवा कर्मचारी के तलब भत्ता अर्धमासिक रूप में भुगतानी करबाक लेल संबंधित निकाय के पत्रचार कलक है। सोम दिन कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय सब निवृत्त भरण व्यवस्थापन कार्यालय आ कुमारी चौक तथा केंद्रीय तहसील कार्यालय के पत्रचार कर संघीय सरकार अंतर्गत के निकाय में कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारी के हरेक 15 दिन पहुँचलाक बाद अर्धमासिक रूप में तलब भत्ता भुगतानी करबाक लेल पत्रचार कैल गेल। अर्थमंत्री स्तर के 2083 बैसाख 4 गति के नीतिगत मार्गदर्शन हिसाबे संघीय सरकार अंतर्गत के निकाय में कार्यरत राष्ट्र सेवा कर्मचारी 15 दिन काज कर चुकलाक बाद तलब भत्ता उपलब्ध करेबाक अनुरोध कैल गेल। अहिना का बजट वक्तव्य 2083-84 हिसाबे कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सेहो भुगतानी कराब एवं कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय के कार्य क्षेत्र भीतर के संघीय सरकारी निकाय से उल्लेख भेल बमोजिम भुगतानी के लिए निकासा भाव मांग आयला पर सो वही हिसाबे भुगतानी करबाक लेल सेहो अनुरोध कलक। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान ऑस्ट्रेलिया के भूमि में हाइपरसोनिक तथा अन्य लंबा दूरी के मिसाइल परीक्षण करबाक तैयारी कलक। बढ़ रहल क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती के बीच जापान ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहकार्य थप विस्तार करबाक सहमति कर संगे एहन परीक्षण के तैयारी आगू बढ़ायल गेल। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मारलेस और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी आई कैनबेरा में भेल भेटवार्ता पश्चात ऑस्ट्रेलिया सैन्य परीक्षण क्षेत्र में जापानी मिसाइल परीक्षण के लिए व्यवस्था मिलेबाक बतौलन। मंत्री मारलेस आवावला देश दशक में जापान के ऑस्ट्रेलिया के मिसाइल परीक्षण क्षेत्र प्रयोग कर लेल सहज हेबासन दुनू देश बीच सब व्यवस्थित आ उन्नत सहकार्य विकास कैल जेबाक बतौलन। ओ ऑस्ट्रेलिया से जापान के विभिन्न क्षेत्र में रणनीतिक गहराई प्रदान कर सकबाक आई में ऑस्ट्रेलियाई परीक्षण क्षेत्र के प्रयोग सेहो महत्वपूर्ण रहल बतौलन। जापानी मंत्री कोई जुमी ऑस्ट्रेलिया में जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स हाइपरसोनिक लगायत लंबा दूरी के स्टैंड अप मिसाइल परीक्षण कर सकला पर के अभूतपूर्ण विकास के रूप में लेल गेल बतौलन। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पिछले आर्थिक वर्ष में नेपाल से 29 अरब 32 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली भारत और बांग्लादेश को की गई निर्यात। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से भारत के स्थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने की शिष्टाचार भेंट। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को आगामी आश्विन 16 से 19 गत्ते तक काठमांडू में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय यथावत। और यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने बताया कि पिछले आर्थिक वर्ष में नेपाल ने भारत और बांग्लादेश को बिजली निर्यात कर 29 अरब 32 करोड़ 47 लाख रुपए की आमदनी की है। उन्होंने कहा कि वर्षा के मौसम में बिजली उत्पादन बढ़ने और घरेलू खपत के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा न होने के कारण बिजली निर्यात करनी पड़ती है, जबकि सूखे मौसम में उत्पादन घटने पर भारत से बिजली आयात करनी पड़ती है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड्गराज पौडेल ने कहा कि नेपाल को यूरोपीय संघ की हवाई सुरक्षा सूची से हटाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में सुधारात्मक कार्य योजना और संस्थागत सुधार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने बताया कि दुग्ध विकास संस्थान ने किसानों को 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। संस्थान के पास करीब 24 करोड़ रुपए मूल्य का दूध पाउडर और मक्खन का भंडार है। प्रतिनिधि सभा से सभा ने पासपोर्ट पहला संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि विधेयक विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों और आपात स्थिति में अस्थायी पासपोर्ट की व्यवस्था को कानूनी आधार देगा। बैठक में थारू आयोग की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट भी पेश की गई। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने शिष्टाचार मुलाकात की। रक्षा मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे प्रधानमंत्री शाह से सेनाध्यक्ष सेठ ने आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री के प्रेस एवं अनुसंधान सलाहकार दीपा दहाल ने इसकी जानकारी दी। मुलाकात में नेपाल के लिए भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल के औपचारिक निमंत्रण पर सेनाध्यक्ष सेठ 4 दिवसीय यात्रा के सिलसिले में रविवार को काठमांडू पहुंचे थे। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में उनकी पत्नी कोमल सेठ भी शामिल है। नेपाल और भारत के बीच वर्ष 1950 से एक दूसरे के सेना प्रमुखों को

0: मानद महारथी का दर्जयानी चिन्ह प्रदान करने की परंपरा रही है। राष्ट्रीय सभा के सांसदों ने संघ प्रदेश और स्थानीय तह के बीच समन्वय के अभाव में कानून निर्माण में समस्या होने की बात कही है। विधायन व्यवस्थापन समिति की बैठक में सांसदों ने कहा कि साझा अधिकारों के तहत कानून बनाते समय तीनों तहों के बीच पर्याप्त परामर्श नहीं होने से विवाद और अन्योल बढ़ रहा है। उन्होंने एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना सहकार्य पर जोर दिया। संविधानविद डॉक्टर खीमलाल देवकोटा ने कहा कि नेपाल में संघीयता का अभ्यास नया होने के कारण पड़ोसी देशों के अनुभवों से सीख ली जा सकती है। राष्ट्रीय सभा की संघीयता सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति की बैठक में सांसदों ने नीति निर्माण के स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा रहे समुदायों को आरक्षण और अवसर देने की आवश्यकता बताई है। सांसदों ने कहा है कि सरकारी नियुक्तियों में समावेशी और समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नीतिगत सुधार जरूरी है। उन्होंने महिलाओं, दलितों, दिव्यांगों तथा सामाजिक और जातीय रूप से पिछड़े समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अध्ययन और शोध पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि समावेशिता केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहकर नीति निर्णय और सार्वजनिक निकायों में समान अवसर और सहभागिता सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस ने संविधान की उपलब्धियों की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान संशोधन की पहल करने का निर्णय लिया है। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे ने बताया कि संविधान में समसामयिक सुधार के लिए सर्वोच्च अदालत के सेनानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी के 15वें महाधिवेशन की मुख्य व्यवस्थापन समिति सभापति गगन कुमार थापा की अध्यक्षता में गठित की गई है। महाधिवेशन आश्विन 16 से 19 गते तक होगा। इससे पहले बड़ा, वड़ा, पालिका, क्षेत्र, जिला और प्रदेश स्तर के अधिवेशन की तारीख केंद्रीय निर्वाचन समिति तय करेगी। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की ने कहा कि स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने की आयोग की जिम्मेदारी को समयानुकूल मजबूत बनाकर पूरा किया जाएगा। काठमांडू स्थित आयोग के कार्यालय में पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तों और आयुक्तों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंधन में कानूनी, तकनीकी और व्यवस्थापकीय सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुदूर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों सहित विभिन्न इलाकों में भारी बारिश और मानसून जनित आपदाओं के खतरे की चेतावनी दी है। इसके बाद जिला प्रशासन कार्यालय ने लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह भी किया है। इसी तरह भाद्र 2 गते रात 9 बजे से भाद्र 4 गते सुबह 5 बजे तक ग्रामीण कच्ची सड़कों पर रात के समय वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी मीना अर्याल ने दी है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण म्यागदी जिले में संचालित जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। इसी तरह 20 मेगावाट क्षमता वाली 2 परियोजनाएं बंद हो गई है। सड़क मार्ग की खराब स्थिति के कारण निर्माण सामग्री, उपकरण और ईंधन की ढुआई नहीं हो पाने से धौलागिरी ग्रामीण नगर पालिका में निर्माणाधीन 4 जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान के कर अधिकृत युवराज एम एस पाल सहित दो लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग के प्रवक्ता सुरेश नेपाने ने बताया कि लेखा परीक्षण और कर निर्धारण के काम में सेवाग्राहियों से रिश्वत लेने के आरोप में पाल के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दर्ज किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के पेचेनिही गांव में मंगलवार यानी कि आज सुबह रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमले में कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल हमला गांव के एक व्यस्त चौराहे पर हुआ जहां डाकघर और कई दुकानें थी तथा आसपास आवासीय मकान थे। हमले के बाद कई वाहनों और इमारतों में आग लग गई है। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनीहू बोब के अनुसार हमले में 10 निजी मकान, एक कैफे, डाकघर, 5 दुकानें और 15 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बताया कि हमले में 2 छोटी बैंडेरोल क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले आर्थिक वर्ष में नेपाल से 29,32,00,00,000 रुपए से अधिक की बिजली भारत और बांग्लादेश को की गई निर्यात। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से भारत के स्थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने की शिष्टाचार भेंट। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन को आगामी आश्विन 16 से 19 गते तक काठमांडू में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय यथावत। और यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में कम से कम 10 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
4: स्टार 1415 #डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।